98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

रिलेशनशिप में भसड़ करते टाइम आपने ये नहीं सोचा था ना दैट इज गोइंग टू एंड अप इन अ रियली हार्ड कोर कॉन्वर्सेशन विद योर गर्लफ्रेंड जो ऑब्वियस आपको काफ़ी बीटी देने वाली है. लेकिन अगर ये कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं हुई है, शी इज कॉल्ड यू फॉर कॉफी और आपको पता है कि आपकी पब्लिकली काफ़ी पिटाई होने वाली है, माई सजेशन टू यू इज अपने जूतों में थोड़ा सा नमक डाल कर जाना. जी हाँ बहनों और भाइयों, यू मे थिंक आई एम क्रेजी बट आई एम नॉट. साइंस के हिसाब से सॉल्ट यानी कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास की और आपके अंदर की नेगेटिविटी को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है और आपके सिस्टम से आप उसे दूर रखती है और आपके सिस्टम से उसे दूर रखती है. सो अगर आपके जूतों में सॉल्ट है या फिर आपकी पॉकेट में सॉल्ट है, योर गर्लफ्रेंड विल नॉट बी एबल टू सी इट. लेकिन जो टॉक्सिसिटी का माहौल बन रहा होगा, आप उसे डेफो मिनिमाइज कर सकेंगे एंड यू कैन क्लॉक दैट एज अ टिप फॉर लाइफ. इसे यूज करके देखो, गर्लफ्रेंड ने अगर आपके साथ सेम कॉफी ग्लास में एक स्ट्रॉ डाल के शेयर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना. ऑन दैट नोट, आई रियली डोंट वॉन्ट अनदर न्यू नेम. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जाना, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: तुम्हारे दिल के साथ तो बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कोई खेलना चाहता है? I want to do that, baby.
1: Love game. Love game.
0: It is time to play the love game. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Send me your number on Insta या FB and I promise I'll call you so that we can play the love game. और मेरे साथ लाइन पर अभी रोशन है. Hi रोशन.
2: Hi Roshi, I'm so excited. Roshi, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊँ आपको.
0: थैंक यू सो मच.
2: बात नहीं करने की इच्छा हो रही थी आपसे, आज आपने फाइनली फोन किया. थैंक यू सो मच.
0: दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि मतलब मुझे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मतलब आई कॉल यार हो जाती है देर. अच्छा मैं गंदा गाती हूँ, मुझे पता है. दिस इज नॉट अबाउट मी.
2: आप ये देर के लिए तो हम पूरी जिंदगी वेट कर सकते हैं रोशी, आप चिंता मत कीजिए.
0: यू आर सच अ ड्रामेबाज. आप तैयार हो ड्रामेबाज मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए?
2: जी जरूर.
0: अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपको तीन ऐसे हिंदी पिक्चर के डायलॉग्स बताऊंगी अंग्रेजी में, आपको मुझे बताना है कि उसका हिंदी में ओरिजिनल डायलॉग क्या था. ठीक है?
2: ठीक है.
0: आपका पहला लाइन है क्लोजर क्लोजर क्लोजर. अच्छा आपको पिक्चर का भी क्यू दे देती हूँ कि दिस इज फ्रॉम दिल तो पागल है.
2: पास और पास और ज्यादा पास.
0: यू आर स्पॉट ऑन. मुझे लगा यू आर जस्ट सेइंग पास एज इन लाइक आई वांट टू पास दिस क्वेश्चन, बट आपने तो बहुत सही बताया ये. आर यू रेडी फॉर द सेकंड वन?
2: जी जरूर.
0: ओके देयर यू गो. इफ यू वांट समथिंग विद ऑल योर हार्ट द एंटायर यूनिवर्स विल ट्राई टू गिव इट टू यू.
2: अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की चाहत में लग जाती है.
0: मैन तू तो सीरियस बॉलीवुड बफ है यार.
2: हाँ.
0: अच्छा
2: देखकर बड़ा हुआ ना.
0: अच्छा ठीक है, ये तेरा थर्ड है. इफ यू गेट दिस राइट यू आर गेटिंग रोशिफिकेशन. ओके तो योर थर्ड डायलॉग इज योर स्माइल इज सो डेंजरस, इफ आई हैड अ हार्ट आई वुड हैव डेफिनेटली फॉलन फॉर इट.
2: तुम्हारी स्माइल इतनी डेंजरस है ना, अगर मेरे पास दिल होता ना कब का तुम्हारे पीछे आ जाता. ये जवानी है दीवानी से ना.
0: डूड यू आर अमेजिंग. ये सिर्फ आपके लिए.
1: यू've बीन रोशिफाइड.
0: ब्रो तू कितनी पिक्चरें देखता है यार, क्या करता है जिंदगी में?
2: वही थोड़ी बहुत पिक्चरें देख लेता हूँ, डायलॉग दिमाग में चिपक जाते हैं, क्या करें.
0: बहुत सही. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप जिंदगी में करते क्या हो? बॉलीवुड बॉलीवुड में काम तो नहीं करते?
2: नहीं नहीं, मैं एक्चुअली फिलहाल तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ. कभी कभी बीच में लिख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ बस.
0: सीरियसली? अच्छा ठीक है, तो फिर जाने से पहले aren't you going to like sing a song for me?
2: हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली केके का एक गाना है.

0: आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। बस इतना ही है।
1: यू आर सो ऑसम। ये इन द हिस्ट्री ऑफ मिर्ची इंस्टा पे पहली बार हो रहा है कि एक ही कॉल में दो बार रोशिफिकेशन फॉर द सेम पर्सन।
0: थैंक यू रोशी, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और आपने मेरे दिल को छोटा सा पडल बना दिया विद योर गाना। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपके साथ यही नहीं, मतलब डिटो सेम नहीं, बट एक लव गेम खेलूं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ, मतलब सोच रहे हो इसके बारे में, भगवान ने मुझे इतनी क्यूट शक्ल दी है, ऊपर से इतना दिमाग भी दे दिया कि जब मैं फाइनली एक डेटिंग ऐप पर गई तो मैंने जब सब कुछ एक्टिवेट किया ना, तब संडे को दोपहर के 2 बज रहे थे। नाउ आई डिड नॉट नो दिस, बट रिसर्च के हिसाब से संडे को 2 बजे इज द बेस्ट टाइम टू गो एक्टिव ऑन योर डेटिंग ऐप इफ यू वॉन्ट टू बी स्वाइप राइट। वो इसलिए होता है बिकॉज संडे आफ्टरनून के टाइम तक सारी दुनिया हंग ओवर होती है, सारी दुनिया इज फीलिंग सॉरी फॉर इटसेल्फ कि यार जिंदगी में प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन एक कंपेनियन नहीं है। एंड लिटरली उस समय संडे को दोपहर को एवरीवन इज इंडोर्स और उन्हें नींद आ रही होती है या नहीं वो यूजुअली अपने फ़ोन पर होते हैं टाइम पास करने के लिए, देयर चेकिंग आउट देयर डेटिंग एप्स एंड वोला, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए, फ्यूचर पार्टनर आपका वहाँ इंतजार कर रहा हो। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली एक्टिवेट योर डेटिंग ऐप, संडे 2 PM इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरी जान, यू जस्ट हैव टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोथ।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ गॉड, वन मोर।

0: Avicii, It's Hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउटआउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर करार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा कम म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं, we can imagine him smiling, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में. दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Show ka naam hai Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao, follow karo mujhe. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe jo gaana hume pasand aane wala hota hai na, wo hamari destiny mein likha hota hai. Kab kaise sunna hai, hum kaun sa appointment leke jaate hain ki aaj main wo gaana jaake sunungi aur mujhe wo gaana acha lagega. Aise nahi hota hai. We just stumble upon that song. भी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में हैं और वहां वो गाना सुनाओ. इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी. आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है. देन लास्ट ईयर मिस मैश का इट्स इनक्रेडिबल. हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज. इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स. ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई. और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स आल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन. मुसाफिर कैफे का गाना है. आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है. मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी. दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है. एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना. ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है. दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश. शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. उनकी कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है काफी है ना. अ नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना।

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, द एंटायर जेनरेशन फेल्ट इट टुगेदर. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन दिस सॉन्ग तारे इज माय फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौर का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
0: पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सुजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

0: कितने मेरी गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hriday Ka Gaana, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 11 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Gaana ka saath.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज एट आरजे कनिका. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड समटाइम जो गाने हमें अच्छे लगने होते हैं ना, हम उन्हें ढूंढने नहीं निकले होते हैं, वो बस हमारे रास्ते आ जाते हैं. ऐसे ही मैंने पिछले हफ्ते एक गाना सुना कॉल्ड बावरे. इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, व्हिच इज बेसिकली अबाउट वन साइडेड

लव एंड इतने पोएटिक वे में इन्होंने वन साइडेड लव के बारे में बात करी है. यू नो वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर वन साइडेड लव के बारे में बात हुई है. ऑनेस्टली गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो, बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanek on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है Shisha, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring Swara Verma. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके Shisha is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
3: मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप. शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं. कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika. कोई गाना बताना हो, कोई सजेशन हो, बिंदास आके हिट मी. आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ. मैं और मेरे प्रोड्यूसर अशकाय, वी टेक योर सजेशन रिकमेंडेशन वेरी वेरी सीरियसली. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
5: Teri Deewani
4: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा. साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर. अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ. कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर. इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है. किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, बट आई एम ऑल अबाउट यू बेब. पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग. देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहाँ प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहाँ आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो. यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन. एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है. ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है. ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी. शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है. बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील. तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.
6: तेरे नाम

0: डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वाज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक और इंस्टाग्राम पर आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग

तरह तड़पाता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है काना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
3: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे बाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप इसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 11

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। दे फॉरगॉटन अबाउट इट। जेलसी को पैशन बना दिया है, पोसेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। लेकिन शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्राइंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया, इट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अवाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता है। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक कि अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस, समवन comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai. Usne bola hai sabko, are Amal ne itna achha gaya hai, mujhe kyun gawa rahe. To maine bola, aisa mujhe chahiye. Aisa in log kisi ki bhi nahi hai. Aisa meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before Abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर वन बन गई है। This is ये आवारापन, the new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची टॉप 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Tony.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Let's go crazy.

सिलसिला तुम्हारे साथ में, यू आर ऑफिशियली ट्यून्ड इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स। अब चाहे फिलहाल तुम किसी भी जगह पर हो या फिर अपने घर के किसी भी कोने में हो, ये आवाज अलार्म से ज्यादा पावरफुल होती है। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स के स्टार्ट होने की आवाज। आज का रूल काफी सिंपल है, कॉफी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूड बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाने लेकर आयो तुम्हारे लिए मिर्ची दार, और साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की खबरें हैं, बॉलीवुड की थोड़ी गपशप है, यहाँ वहाँ की बातें हैं, अपडेट्स हैं एंड अ लॉट मोर, बिकॉज मॉर्निंग्स जो है बेसिकली लाइफ का लोडिंग स्क्रीन होता है। एंड मिर्ची मॉर्निंग्स इज हियर टू मेक श्योर कि तुम बफरिंग में नहीं बल्कि भंगड़ा मोड में आज का दिन शुरू करो एकदम मिर्चीदार तरीके से। सो बकल अप बिकॉज आने वाला है बहुत कुछ। अगले कुछ घंटों के लिए तुम और मैं साथ साथ में इस दिन को बनाएंगे और ज्यादा मिर्चीदार। एंड हे, मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे अभी के भी फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनने वाले हो वेदर का हाल चाल। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 67 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली क्लाउडी है लेकिन फील हो रहा है 69 डिग्रीज फारेनहाइट की तरह। मतलब कि वेदर जो है वो कह रहा है आज थोड़ा सा बढ़ चढ़कर मैं अपना जलवा बिखेरने वाला हूँ। फ्रॉम 83 डिग्रीज फारेनहाइट ऑल द वे इट्स गोना फील बिटवीन 69 to 83 डिग्रीज फारेनहाइट। कल का हाई जो था वो 84 डिग्रीज फारेनहाइट था, सो टुडेज हाई इज प्रीटी मच सिमिलर। डिफरेंस सिर्फ तुम्हारे डेली रूटीन में हो सकता है लेकिन वेदर जो है वो कंसिस्टेंट है। अब रेन की बात कर लेते हैं, लास्ट 24 आवर्स में तो 0 मिलीमीटर्स की बरसात थी लेकिन अगले 24 आवर्स में होने वाली है 5 मिलीमीटर्स की बरसात। सुबह से बरस ही रहा है, सो अगर तुम फिलहाल बाहर घूम रहे हो और अम्ब्रेला को इग्नोर करके आए हो तो आज तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। लेकिन अगर अभी तक बाहर नहीं निकले हो तो अम्ब्रेला को कैरी करना बिल्कुल मत भूलना एंड ऑल्सो लेयर के प्लेयर बनकर ही बाहर जाना। वेयर योर SPF 50++++ वाला सनब्लॉक एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। And while you do all that, let me remind you, Nanak Foods presents मिर्ची करेगा बंधन पूरा है, contest चल रहा है मिर्ची पर जिसमें तुम amazing gift hampers जीत सकते हो courtesy Nanak Foods, bringing sweetness to your life. Register करना बहुत ही easy peasy है, राखी type करना है RAKHI और अपने पूरे नाम के साथ उसे WhatsApp करना है मुझे right now. मेरा WhatsApp का number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. And you can also DM me Instagram or X पर, मेरा handle है मिर्ची प्रिज, that is MIRCHIPRIS. Of course, this is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers going on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com. Abhi ke liye, Mirchidar bangers coming up your way. Stay tuned and stay hot.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज फोरम।
1: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
2: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज़ वेल।
1: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
2: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
1: व्हाट्स हर नेम?
2: हर नेम इज महक।
1: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
2: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
1: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
2: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
1: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
2: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार, उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: गई चुल।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला एंड इट्स टाइम फॉर अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले नेपाल में डेवेस्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स और मडस्लाइड्स के बाद सिचुएशन हार्ट ब्रेकिंग हो गई है। मोर देन 160 पीपल हैव डाइड एंड एट वन पॉइंट अराउंड 300 इंडियंस वर रिपोर्टेड मिसिंग। थैंकफुली नेपालीज रेस्क्यूअर्स से अराउंड 100 मिसिंग इंडियंस एंड 25 चाइनीज नेशनल्स हैव बीन फाउंड। अथॉरिटीज आर स्टिल असेसिंग द फुल स्केल ऑफ द डिजास्टर विथ मेनी पीपल स्टिल मिसिंग। सेंडिंग आवर थॉट्स टू एवरीवन अफेक्टेड। नंबर टू पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टीनेजर्स के लिए टाइम आउट का प्लान बना है। मेटा हैज प्रपोज्ड 2 आवर डेली लिमिट फॉर टीनेज यूजर्स इन द US प्लस अ नाइट मोड फॉर मिडनाइट टू 6 AM। स्कूल मोड एंड हिडन लाइक्स आर ऑल्सो बींग प्रपोज्ड। And lastly, cricket say Srilankan cricket has a new centurion making history. Sonal Dinusha has become only the third Sri Lankan player after Arvinda De Silva and Kumara Sangakkara to score 3 centuries in a 2-match test series. And that's your Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot. Oh,

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और क्या तुमको पता है यश एंड कियारा आडवाणी की मूवी टॉक्सिक के कुछ इंटिमेट सीन्स जो है वो ऑनलाइन लीक हो गए डिस्पाइट द मेकर्स इशूइंग एन एंटी पायरेसी वार्निंग। अब ये जो सीन्स है ना, इनकी वजह से काफी बैकलैश जनरेट हो रहा है विद सम व्यूअर्स क्वेश्चनिंग की स्टोरी में ये सीन्स कुछ एड भी कर रहे हैं समथिंग मीनिंगफुल या नहीं। वन फिल्म क्रिटिक इवन सजेस्टेड दैट रिलाइंग हेवली ऑन सच सीन्स कुड इंडिकेट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द script. While reactions online have been debating just how much of this content the movie really needs. वैसे पिक्चर रिलीज हो चुकी है और काफी बढ़िया रिव्यू आ रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। लेकिन रिमेम्बर यार, लीक्ड कंटेंट जो है उसे शेयर करना इज एब्सोल्युटली नॉट कूल। सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री बाय वॉचिंग मूवीज थ्रू लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वर्थ चेकिंग आउट, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। गेट अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। वाओ। एंड साथ साथ में अगर तुम्हारे पास कोई पुराना गोल्ड कहीं पड़ा हुआ रखा है उसे लेकर जाओ, 18 कैरेट से अबव होगा तो एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन मिलेगा तुमको एट तनिष्क, जहां पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, ऑफ कोर्स विद कंडीशंस अप्लाइड। एंड अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, ऑफ कोर्स विद मी। बोलो तो प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट भी कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स राइट 9033647244। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय।
2: हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज नैशो।
1: हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
2: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
1: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
2: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
1: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
2: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
1: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
2: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। तो हम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
2: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स डॉट

0: हेलो हेलो सोना, कितना सोना है? लेट्स फाइंड आउट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,600. $4,600 पर ट्राई औंस पर आकर मार्केट स्टेबल हो गई। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड बार्स 1 ounce, 100 ग्राम्स, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स अवेलेबल एट RajJewels.com। गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करने के लिए 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज राज ज्वेल्स के स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करें, जिसमें आज ज्वेलरी गोल्ड प्राइस लॉक करके घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के गोल्ड ज्वेलरी आपकी। गोल्ड प्राइस आज लॉक करेंगे और

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh, aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup hoy kus kus kus kus kus. Oh, khwabon ki nadi mein khaye gote gud gud gud gud gud gud hoy gud gud gud gud gud. Oh, आंखों ही आंखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कुस कुस कुस कुस कुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: पूर्णिमा।
1: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
2: गुड।
1: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
2: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट में प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
1: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
2: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
1: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
2: बड़े हैं।
1: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
2: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
1: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
2: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

Mirchi. It's hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फटाफट से पता करते हैं आज राशि में क्या लिखा है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इरीज यानी मेष राशि, क्रिएटिव प्लान थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट डोंट लेट दैट किल योर वाइब। एक गुड फ्रेंड या क्विक वर्कआउट मूड भी फ्रेश कर देगा और माइंड क्लियर भी कर देगा। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन। लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पेंडिंग वर्क फिनिश करने का फुल जोश है आज। बस वर्ड्स को थोड़ा सा फिल्टर करके बोलना। कॉन्फिडेंस और मैं ही सही हूँ के बीच में एक थिन लाइन होती है। लकी कलर इज स्टील। लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज एक्टिविटी और डिस्ट्रैक्शन दोनों हाई हैं। फोकस को प्रोटेक्ट करो, बाउंड्री सेट करो और अगर पास्ट का कोई थॉट वापस आए किसी अपने से बात कर लेना। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, समवन इन्फ्लुएंशियल कुड गिव योर कॉन्फिडेंस अ सीरियस बूस्ट, बस इमोशंस थोड़े से हैवी फील हो सकते हैं, सो टेक इट इजी। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, कॉन्फिडेंस इज लिटरली ग्लोइंग बट डोंट रश योरसेल्फ। हिडन टेंशन या जल्दी में बोली हुई बात मूड का विलन ना बन जाए। लकी कलर इज सैफरन। लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि, आज स्पॉन्टेनियस मोड ऑन कर लो, जो दिल में है बॉटल अप मत करो। किसी क्लोज फ्रेंड से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड सडनली लाइफ फील्स अ लिटिल लाइटर। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन। लकी नंबर इज 8। लीब्रा यानी तुला राशि, वर्क प्रेशर या लिटिल स्ट्रेस आ सकता है बट डोंट लेट इट टेक ओवर। वार्म्थ, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्लेजर्स, चाय, कंफर्ट फूड या फेवरेट सॉन्ग कैन कंप्लीटली चेंज द मूड। लकी कलर इज रोज पिंक। लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ओपिनियंस आज हर डायरेक्शन से आ सकते हैं, सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं है। क्लोज फैमिली, लव्ड वंस या किड्स के साथ सिंपल टाइम स्पेंड करो, वही रियल थेरेपी हो सकती है। लकी कलर इज बर्गंडी। लकी नंबर इज 5। सजिटेरियस यानी धनु राशि, पीपल मे सडनली गेट वेरी क्यूरियस अबाउट योर पर्सनल प्लान्स। तुमको हर सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की जरूरत नहीं है, टेक सम फिजिकल रेस्ट एंड गिव दोस टायर्ड मसल्स सम लव। लकी कलर इज स्काई ब्लू। लकी नंबर इज 16। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यू आर थरो फोकस्ड एंड गेटिंग थिंग्स डन बट टुडे स्पेशली विद द लूनर एक्लिप्स एनर्जी, कॉन्ट्रोवर्सी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। आर्ग्यूमेंट्स और रिस्की सिचुएशन नॉट वर्थ द हेडेक। लकी कलर इज चारकोल। लकी नंबर इज 22। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, थिंग्स कैन फॉल ब्यूटीफुली इनटू प्लेस गिविंग यू दैट फाइनली वाली फीलिंग। ग्रेट डे टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स और थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, लॉन्ग पेंडिंग बिजनेस नेगोशिएशंस कुड फाइनली मूव इन योर फेवर बट विद द फुल मून इन योर साइन, रिलेशन Relationships need a little softness. Sometimes winning an argument is less important than keeping the peace. Lucky color is sea green. Lucky number is 31. And that was your Rashi Zone. Main hoon Prisila, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Mirchi. It's hot.

अब मिर्ची मॉर्निंग्स का रैपअप का टाइम तो आ ही गया है. मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग. तुमने चाय पी ली, कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, कम्यूट कर लिया, ट्रैफिक को भी झेल लिया है और साथ साथ में अपने मॉर्निंग ब्लूज को भी कॉन्कर कर लिया है. जाते जाते याद दिला दो कि रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट चल रहा है. मिर्ची करेगा बंधन पूरा, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अवे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स टू द विनर. और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अभी के अभी आरएके चाय राखी टाइप करो, अपने पूरे नाम के साथ भेजो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244. याद रखो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो इजी पीजी तरीके से. फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो, मेरा हैंडल ढूंढो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो क्योंकि अब कम दिन बचे हैं राखी में और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ विनर, फटाफट से अभी इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करो इन एसोसिएशन with Virani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com for more details. Aur abhi chhod kar ja rahi hu tumhare liye mirchidar bangers. Tata bye bye from me. Milungi tumhe kal same time same place par. Stay tuned and stay hot.

0: बचपन में ना जहाँ कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विंस का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहां अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अच्छा ये बताओ एक और एक क्या होते हैं, अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11 और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और मिड डे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता, मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वाज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ व्हाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

I got you naked. You keep my dream alive. You can see I can

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने DD1 पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना। एक किशन जो कि इनोसेंट सा बंदा है, और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। वेल, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है। और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहुना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमा कर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर। और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एज अ काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं, उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ हर रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया, बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था, और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी, ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, विच वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट वॉज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे, और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे, और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, and that is how we love Kajol. Like, yeah, stay tuned with me, Zara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज ऑन।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।
3: शुक्र

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। यू नो, रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वही ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में.

रूना लैला की आवाज़ है, गुलदार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी, फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी, सुन करके वापस आओ। कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज सॉन्ग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आर डी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दा से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आर डी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक, ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म लाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसपे देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा वाई पीपल से बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो बस गाने सुन करके वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अरमान। इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। दी ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इट वॉज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ड फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ, आज वाला ना किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आर जे श्रेया विद लव, दैट्स आर जे SHRUYA श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बट म्यू गेट्स मिक्सड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप. एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स. और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर, इनके लाइफ, इनकी पार्टनरशिप, सब चीज के बारे में डिटेल्ड बात. But all of that in a while, Babu Moshai. अभी तो इस गिरफ्तारी के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान है on the show. But to enjoy all of that, you'll have to stay tuned to Mirchi. मैं हूँ आपके साथ श्रुति. It's on.

गुड़ी किन खालिया गुड़ वाली चा किन पीती जिदा नाना किन खिचया खिच के मारी किन सीटी ओ छंड।

0: Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: O chanati kuri, o chanati kuri.

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गो टू इंस्पिरेशन है ये
1: श्रुति श्रुति।
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले ही लेती है। तभी तो इतने सारे हिंदी रीमेक्स हैं ऑफ साउथ फिल्म्स। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्वदेश, नंबर दो पे हमने हेरा फेरी को डिस्कस किया, नंबर तीन पे अजब प्रेम की गजब कहानी, और अब बारी है नंबर चार पे फिल्म गुमराह को डिस्कस करने की। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय वर्धन केतकर, जो 2019 में आई तमिल फिल्म थाडम के ऊपर बेस्ड है। ये एक क्लेवर ट्विन मिस्ट्री है जिसमें ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। वैसे गुमराह जो है वो एक सस्पेंसफुल फॉर्मूला को कोर्टरूम ड्रामा के साथ मिक्स करके बॉलीवुड फैंस को ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ परोसी गई थी, विच डेफिनेटली कीप्स यू गेसिंग अबाउट द मूवी टिल द एंड। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म बिल्लू, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009। और ये फिल्म 2007 में आई मलयालम फिल्म कथा परयम्बोल का हिंदी रीमेक है। ऑल्दो अगर आप मलयालम वर्जन देखेंगे तो आपको शायद बिल्लू समझ में ना आए, लेकिन फिल्म की वार्म स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल तो पर्सनली जीत लिया था। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप कोई ऐसी ही फिल्म को ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ये गाना हॉलीवुड की मूवी में इस्तेमाल किया गया। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। यस यस यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं फिल्म स्वदेश की बात कर रही हूँ, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर। फिल्म में शाहरुख खान और गायत्री जोशी लीड रोल्स में थे, और इसका जो ये वाला एपिक गाना है, इसको इस्तेमाल किया गया है हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2 में। यस, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने का जो ट्यून है ना, वो साल 2001 में ही तैयार कर लिया गया था, बिकॉज दैट वॉज मेड फॉर द मूवी लगान। हाँ जी, लेकिन उस फिल्म में जब इस ट्यून को यूज नहीं किया गया किसी गाने के लिए, देन इट वॉज रीयूज फॉर द मूवी स्वदेश, एंड देन ये एपिक गाना तैयार हुआ। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे जो कहानी देखने जाते हैं हम, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।